हमारी प्रकृति हमें जीने के हमेशा नियम बताती है, सिखाती है। पानी को ही लीजिए ना, पानी जहाँ जिस चीज़ से मिल जाता है उसका रंग रूप वैसा हो जाता है, और ये हमें सिखाता है कि पानी जैसे हो जाओ, जैसी परिस्थितियाँ हो उस तरह से ढल जाओ।

ये जो जिंदगी है ना दोस्त, ऐसी ही है। किसी राह को पकड़कर चल लीजिए, चार कदम पे फिर एक चौराहा मिल जाएगा और फिर वही हालो हालात हो जाएंगे कि अब किधर मुड़े, कौन

राजू ने, यानी जिंदगी हर कदम पर एक चुनौती है जहां हमें चुनना पड़ता है और फिर संभल कर फैसले लेने होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाना होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम भी भोर सुहानी के किनारे पे आ पहुंचे हैं। जी हाँ, इस आखिरी गीत के साथ यही भोर सुहानी का ये सफर समाप्त होगा।

0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో అంటే 6 గంటలకి హిందీలో వార్తలు, 6 గంటల 5 నిమిషాలకి ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నవీన్ సక్సేనా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे. प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं. ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है. श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे.
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे. भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है. चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान.

0: उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फराज को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
3: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around $1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for

ताम तद्धीम तद्धीम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम तद्धीम तद्धीम तकथिमि तकछनु तकथिमि तकछनु ताम धीम तुम नम तरगड़ तुम तरगड़ तुम तरगड़ तुम

Well, the clock ticks 10:06 in the studio, and it's time for Namaste, Hello, Aadab, the perfect blend of Western hits and Bollywood beats. मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया मांडवी. आप मुझे प्यार से प्री करके भी बुला सकते हैं. कैसे हैं आप सब? I hope आपका दिन सुपर डुपर नोट पर शुरू हुआ हो. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, I'll take care of it. आज का शो थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ी सी मस्ती, थोड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपको एक मिनट के लिए रुक कर सोचना पड़ मजबूर कर दे. तो नाश्ता कर रहे हो या आपका फेवरेट कॉर्नर में चाय पी रहे हो या ट्रैफिक में फंस गए हो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन 101.9 FM.

0: Hey, very hungry. What's special today?
1: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
0: And where do we taste all these?
1: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
4: Welcome back, listeners. You are listening to Akashwani FM Rainbow. Rainbow ke saath hai Life Rangin. Hum log kitne ajeeb hai na, जिंदगी में एक छोटी सी चीज हमारे हिसाब से ना हो और हम पूरे हफ्ते के लिए अपना मूड ऑफ कर देते हैं। जान लो आप पहली बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल किया हो, या किसी एग्जाम में 2 मार्क कम आ गए, या किसी ने मैसेज ड्रॉप करके भी रिप्लाई नहीं दिया, किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हो बट रिप्लाई नहीं आया। हम ब्लैंकेट में लपेट कर ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे हमारी पूरी दुनिया वहीं पर खत्म हो गई हो। We literally put our entire life on pause over the smallest setbacks. पर आज मैं आपको एक ऐसी true story बताती हूँ जो आपकी ये complaint हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बात है December 1914 की। Thomas Edison, हाँ वही जिनसे हमें रोशनी मिली है, जिनके वजह से हमें बल्ब वाला रोशनी मिली है, कि पूरी फैक्ट्री में एक भयानक आग लग गई थी। पूरी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय की जान चले गई थी, 13 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जल रख हो गई थी, और उस जमाने में 1.5 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था लगभग। आज के हिसाब से देखो तो करोड़। उनका पूरा फोनोग्राफ वर्क

वर्क्स, उनके रिसर्च पेपर्स सब खत्म हो चुके थे। किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग फट जाता है, पर पता है क्या एडिसन, हमारे एडिसन ने किया क्या है? बता दूंगी इस गाने के बाद। सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

वेल लिसनर, स्टूडियो क्लॉक में टाइम 10:38 हुआ है और आप सुने हैं आशाएं फ्रॉम द मूवी इकबाल। तो मैं इस गाने से पहले मैंने बताया था कि थॉमस एडिसन जी की पूरी फैक्ट्री जल गई थी, वही इंसान जिनके वजह से हमें बल्ब वाला रोशनी मिला है। उन्होंने अपनी आग से जलती हुई फैक्ट्री को देखा, गहरी सांस ली और सीधा ऑर्डर दिया।

सब कुछ दोबारा बनाओ, और इस बार पूरी दुनिया की सबसे न्यूएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी से बनाओ। उनकी टीम ने रेगुलर फायर ड्रिल्स की वजह से पहले ही डैमेज थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन स्पिरिट तो देखिए बॉस, जिस बंदे की पूरी लाइफ का वर्क एक रात में जल गई है, उसने रोने में एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, और अगले ही महीने ठान लिया था कि सब कुछ दोबारा बनाऊंगा। और अगले ही महीने यानी जनवरी 1915 में उन्होंने दोबारा रिकॉर्ड्स बनाया और मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा, जश्न के साथ जल गए, और उन्होंने अगले महीने ही फैक्ट्री को वापस शुरू कर दिया, और हम एक माइनर सेटबैक या एक फेल टेस्ट पर 3 दिन तक डिप्रेसिव प्लेलिस्ट लगा के सुनते हैं, सैड गाने सुनते हैं, बस रूम में बंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही नहीं है कि लाइफ में चीज़ें टूटती है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन टूटी चीज़ों को मालबे पर बैठकर रोने लग जाते हैं। तो आज से जब कोई भी छोटा या बड़ा लॉस होना, एडिसन जी को याद कर लीजिए, पुरानी गलतियों को वहीं छोड़ दीजिए और फिर से शुरू करते हैं। जैसे जो होगा देखा जाएगा, बुरा हो तो कुछ सीख लेंगे, अच्छा होगा तो मज़े ही मज़े। ऑल्सो के सरा सरा, यानी जो भी हो सो हो। चलिए इस पावरफुल एटीट्यूड के साथ एक ज़बरदस्त गाना बजाते हैं। स्टे ट्यून टू आकाशवाणी FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, और मैं हूँ आपकी RJ प्रिया बांधवी।

वेल लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। व्हाट अ मंथ इट हैज़ बीन, फुल ऑफ जॉय, गुड वाइब्स एंड सो मेनी मेमोरीज। एंड नाउ द मंथ हैज़ कम टू एन एंड एंड इट्स ब्रिंगिंग ऑल द फेस्टिव फील्स विद इट। एंड द बेस्ट पार्ट, इट एंड्स विद अ वीकेंड। एंड वीकेंड लिटरली मीन्स वन थिंग, मोर टाइम विद फैमिली, मोर लाफ्टर एंड मोर टुगेदरनेस। Well, remember all these three things, which is more time with family, more time with yourself, your thoughts, and put it onto your paper and just move on. Right, on this note, we have another song coming right up, which is Paradise by Coldplay. Enjoy the tunes and stay tuned to Akashavani FM Rainbow 101.9.

0: CNG prices increased by 3 rupees and 89 paise per kilogram in Delhi NCR. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, while over 2,000 people are still missing. India steps up humanitarian assistance to neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. National Sports Day being observed today. IMD issues orange color warning for very heavy rainfall over Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. And India's Vellavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Squash Open title, beating Balkas Farkas of Hungary. Those were the headlines at this hour. Stay tuned for the next program.
1: प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has left for his 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan

वेल, हम बात कर रहे थे नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में, जो आज है, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पोर्ट्स के बारे में ना, मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि यू डोंट हैव टू बी नेचुरली टैलेंटेड टू एन्जॉय देम, यू जस्ट एन्जॉय देम। जैसे आप किसी फ्रेंड के कहने पर स्टार्ट कर सकते हो, पहली बार टेरेबल खेल सकते हो, ठीक है, हर दूसरी बॉल मिस कर सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन समवेयर बिटवीन दीज मिस्टेक्स एंड मिसिंग द बॉल्स एंड मिसिंग द शॉट्स, द लाफ्टर, दोज ओकेशनल विक्ट्रीज, यू स्टार्ट गेटिंग बेटर, यू स्टार्ट टू एन्जॉय इट। जैसे वीकेंड्स पे आप किसी, जैसे छोटे जब ना हम मोहल्ले में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, सारे गेम्स और स्पोर्ट्स ना मोहल्ले से ही शुरू हुए हैं, उन पे इंटरेस्ट आता था, नेटवर्किंग बढ़ता था, बात करने का तरीका, लड़ने का मस्त मज़ा आता था। सो इस नेशनल डे पे खुद से ये मत पूछना कि एम आई गुड एट दिस, मुझे ये आता भी है क्या, बस ये सोचो कि क्या मुझे खेलना पसंद है, हाँ पसंद है तो खेल लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट रीजन इज टू स्टार्ट एंड से ऑल इज वेल। Well, you're listening to Akashwani FM Rainbow 101.9. Here's a song coming your way. Enjoy the tunes.

कोई बात नहीं, कभी कभी स्पोर्ट्स के लिए बस एक पैर ऑफ शूज और एक चेयर से उठने का डिसीजन चाहिए। क्रिकेट विद फ्रेंड्स, सिबलिंग के साथ बैडमिंटन, साइकिलिंग, डांसिंग या शाम को एक सिंपल जॉग, सब काउंट करता है। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट प्लेइंग यू रियलाइज समथिंग। किसी और को गोल स्कोर करते देखना एक्साइटिंग है, लेकिन खुद गोल्स करना वो फीलिंग ही अलग है। तो इस नेशनल स्पोर्ट्स डे में भी 1 घंटा अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के लिए देखिए, दीजिए और खेलिए। 1 घंटा एक्चुअली खेल कर देखिए, क्या पता आपका नेक्स्ट फेवरेट स्पोर्ट्स टेलीविजन पर नहीं आपके सामने हो। चलिए, इस बात पे एक एनर्जेटिक सॉन्ग ट्रैक किया है मैंने, एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी दंगल, कमिंग योर वे। एंजॉय द ट्यून्स एंड स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

Well, listeners, the clock ticks 12:50 in the studio of Akashavani 101.9 FM और हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स डे के बारे में जो आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे. एक चीज मुझे स्पोर्ट्स ने पर्सनली सिखाई ये है कि यू कैन प्रिपेयर परफेक्टली बट स्टिल लूज. आप अपना शॉट प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज ट्रेन कर सकते हो, कोर्ट पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकते हो, फिर भी आपने बॉल नेट पे मारा है वेल, और उस मोमेंट में दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, मैं ये स्पोर्ट खेल ही क्यों रही हूँ. बट देन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट्स और आपको रीसेट करना पड़ता है अपने माइंडसेट को, अपने गेम को, अपने ओपोनेंट को देखने का तरीका, गेम को देखने का तरीका को रीसेट करना पड़ता है. शायद स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल लेसन्स में ये एक है. आप मैच हारते हो, यू लर्न. गलती करते हो, यू ट्राई अगेन. टीममेट्स मेसअप करता है, यू सपोर्ट देम. जीतते हो, यू स्टे हम्बल एंड नेक्स्ट डे यू कम बैक एंड प्रैक्टिस अगेन टू प्ले अगेन. साउंड्स लॉट लाइक अ लाइफ, राइट? लाइफ में हमें कभी भी परफेक्ट शॉट्स नहीं मिलते हैं. कभी प्लान्स फेल होंगे, कभी मिस्टेक्स होंगे, कभी आपको लगेगा बस अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन गेम खत्म नहीं हुआ है. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ सर्व्स यू अ टेरिबल शॉट, बस निराश नहीं होने का. पिक अप योर रैकेट, टेक योर पोजिशन एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. बिकॉज समटाइम्स, वेल समटाइम्स विनिंग isn't about never losing. It is always about being ready to play again. And that, listeners, that is the spirit of National Sports Day.

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। द क्लॉक टिक्स 12:57 विच इज क्लोज टू 1 PM। दैट मीन्स आर शो हेलो रेनबो लाइव फोन इन प्रोग्राम विद द लिसनर्स इज अप नेक्स्ट। लिसनर्स, उससे पहले ना थोड़ी देर के लिए ना हम एक टाइम मशीन में वापस चलते हैं। याद है वो बचपन जब किसी को हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाहर जाओ खेलने, बस कोई नीचे से आवाज़ लगाता है, अरे नीचे आ जा खेलते हैं, और पूरा मोहल्ला स्टेडियम बन जाता था। गली में क्रिकेट, टेरेस पर बैडमिंटन, पार्क में फुटबॉल, और हर गेम का एंडिंग डायलॉग, लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट, इसके बाद ना घर चलते खाते फिर वापस आते हैं, जो ऑब्वियसली एक पॉइंट नहीं 45 मिनट्स तक चलता था। फिर हम बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से काम, और पता ही नहीं चला खेलना कम और फ़ोन पर स्पोर्ट्स देखना ज़्यादा हो गया था। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे पर वाई नॉट ब्रिंग बैक अ लिटल बिट ऑफ द चाइल्डहुड। प्रोफेशनल कोर्ट नहीं चाहिए, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम और खेलने का मूड चाहिए। दोस्त भी तो चाहिए, बट सिंगल वाले स्पोर्ट्स भी रहते हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्क्वाश, एवरीथिंग। और अब इसी बात पर आज का हमारा फ़ोन इन क्वेश्चन है, आपको बचपन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद था? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, या कोई ऐसा गेम जो सिर्फ आपके मोहल्ले का फेमस हो? कॉल कीजिए, बता दीजिए हमें, और चलिए आज थोड़ा बचपन के खेल याद करते हैं। सो हमारे फ़ोन इन नंबर्स है 0402323-0030, और एक नंबर है 0402323-4821, और एक नंबर है 0402970-4715। आप हमें व्हाट्सएप पे इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। द नंबर ऑफ व्हाट्सएप इज 0402323-4822। वेल, ऑन दिस नोट, आई हैव अनदर सॉन्ग लाइंड अप फॉर यू। एंजॉय द ट्यून्स। Stay tuned to Akashwani FM Rainbow 101.9.

0: थैंक यू नाना।
1: हमारे अगले कॉलर को नहीं सुनते। हेलो रेनबो।
2: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम।
1: गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल।
1: आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी तालाब कट्टा अमन नगर से शेर खान बोल रहा हूँ। सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह आपको और सभी को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सेहतमंद रखे।
1: सर आज आपका टॉपिक सुना है आपने?
2: जी मैडम मुझे बचपन में जो है मैं 3-4 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गया, तो उसके बाद भी मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई जो भी हुई। तो मुझे क्रिकेट का गेम बहुत पसंद था, क्रिकेट दोस्तों के साथ खेलता था।
1: यस सर।
2: और मुझे जो है खेलना कूदना मतलब मैं भागना दौड़ना ये बहुत पसंद था। मेरे पापा क्या करते थे, छोटी बहन के पैरों में घुंघरू बांध के उसको भगाते थे और मुझे कहते थे जा भाग पकड़ उसको, तो ये प्रैक्टिस कराते थे, तो मैं उसकी आवाज पे पीछे पीछे दौड़ते उसको पकड़ लेता था। फिर ये प्रैक्टिस हो गई तो दोस्तों के साथ भी फिर मैदानों में यही खेलना कूदना, कबड्डी खेलना और क्रिकेट खेलना। क्रिकेट बॉल की आवाज पे उसके पीछे भागते भागते मैं कीपिंग करता था और बॉल को पकड़ के बराबर बॉलर के हाथों में थ्रो करता था।
1: तो क्रिकेट
2: का गेम बहुत पसंद है और ये भागना दौड़ना खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, यानी मशक्कत करने वाला जो जिस्म को अपने आप को एक्टिव रखने वाला जो काम था वो मुझे बहुत पसंद था बचपन में। और आज भी मैं वही सोचता हूँ, लेकिन आज माहौल बदल गया, हालात बदल गए, तो आज वो नहीं हो सकता।
1: जी सर, तो आप क्रिकेट ज्यादा खेलते थे?
2: हाँ क्रिकेट बहुत खेलता था, पसंद था मुझे और मुझे ही कैप्टन बनाया जाता था, प्रैक्टिस कराई जाती थी बराबर, तो मैं करता भी था वो खेल, बराबर बॉल भी पकड़ता था, बराबर थ्रो भी फेंकता था, तो बहुत मजा आता था मुझे।
1: और
2: मैडम
1: nice,
2: एक सॉन्ग की फरमाइश है, प्लीज आप लेकर
1: दीजिए
2: ना।
1: जी सर बोलिए।
2: फिल्म का नाम है सफर।
1: ओके सर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में। हम थे जिनके सहारे वो
1: अगर मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में
2: हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। ये सॉन्ग है और हमारे अफजल साहब को भी सलाम, मुमताज बाजी को भी प्यार भरा सलाम। आप मुझे वक्त दिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा तो मैं प्ले कर दूंगी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। तो ये है, सारे लोगों को ना क्रिकेट बहुत पसंद था क्योंकि बहुत अफोर्डेबल था और बहुत सारे दोस्त रहते थे, तो इतने सारे दोस्तों के साथ ना क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता था। तो वी हैव अनदर कॉलर रेडी। हेलो रेपो।
3: गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मैडम?
1: अच्छी हूँ सर। आपका नाम?
3: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमावती पेट से बोल रहा हूँ।
1: सर बोलिए सर, आप आज का टॉपिक सुना है?
3: बिल्कुल बिल्कुल सुना मैडम।
1: सर शेयर कीजिए आपका मेमोरी।
3: आज मेरा तो फेवरेट गेम है कबड्डी एंड खो खो वॉलीबॉल।
1: अच्छा सर।
3: और ये तीनों गेम भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला मैडम।
1: That's very nice, sir. Congratulations.
3: बोलता हूँ मेरे को बहुत पसंद है।
1: जी सर।
3: Fourth one is cricket.
1: It's nice, sir. Classic game of India.
3: Okay.
1: Thank you, sir. Thank you for sharing with us.
3: Thank you, madam.
1: Well, on that note, we have a song, "Dhal Gaya Din," coming your way. Enjoy the tunes.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। हमारे अगले कॉलर रेडी है, सुनते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बहुत अच्छा है जी। ओम शांति जी, नमस्कार जी। मेरा नाम पोली सेट्टी मेहर बाबा जुबली से बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। सर बोलिए सर।
1: आपका ट्रैफिक बहुत अच्छा है मैडम। आप कैसा ट्रैफिक देता है, आपका दिमाग बहुत अच्छा तेज चलते हैं मैडम।
0: थैंक यू सर।
1: हम लोग भी FM रेनबो सुन सुन के पहले फोन बात करने नहीं आता मैडम मेरे को
0: जी सर।
1: FM रेनबो सुनने के बाद सब लोग कॉलर से बात करते हैं मैडम। इन लोग बात सुनने के बाद मैं भी कई को बात नहीं करना बोल के थोड़ा डर भी चला गया मैडम।
0: यस सर, थैंक यू सर।
1: बात कर रहा हूँ मैडम।
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। अपना मेमोरी शेयर कीजिए सर।
1: मैं तो पहले स्कूल में पढ़ने के टाइम में भी मैडम, मेरा मेरा गांव में गोदावरी नदी है मैडम
0: जी सर।
1: चिनार में मैडम।

0: Well, that was Rula Kegaya from the movie Jewel Thief, and we have another caller ready. Let's speak to him. Hello?
1: हेलो हेलो प्रिया
0: हेलो
1: जी।
0: रेनबो जी। सर,
1: हाँ
0: आपका
1: जी
0: नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं दीपू बात कर रहा हूँ
0: जी
1: जी।
0: दीपू
1: लाइव
0: जी।
1: है क्या मैडम
0: यस सर, आप ऑन एयर हैं।
1: जी? आप कैसे हैं?
0: अच्छी हूँ सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। आपने आज का टॉपिक सुना है?
1: हाँ सुना है, फिर से एक बार बोल दीजिए ना।
0: आप, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है सर, और आपका फेवरेट स्पोर्ट या गेम क्या था चाइल्डहुड में?
1: जी चाइल्डहुड की बात की जाए तो भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो इतने सारे सपने बदले हैं बीच में। लेकिन मेरा चाइल्डहुड स्पोर्ट्स था रेसलिंग। और उतना ही नहीं, मैं ना अपने लाइफ में इसको अचीव करने के लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के चले भी गया था। और उसने में पैसे बहुत लगते हैं इसके लिए, तो इसीलिए सपना वहीं पे छोड़कर फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अभी भी मैं रेसलिंग को बहुत कंटिन्यू करता हूँ, और अभी मैं कोचिंग देता हूँ रेसलिंग का।
0: जी
1: मैं
0: सर,
1: तो नहीं जा
0: बहुत अच्छी
1: पाया,
0: बात है।
1: लेकिन मैं स्टूडेंट्स तैयार करता हूँ जो जा सके। वेलकम।
0: आप बहुत इंस्पायरिंग है सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन सर। वो थे दीपू जी, और वो रेसलिंग कोच है, और हमारे शो पे आप बात करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402323484822, जो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और हमारे फ़ोन नंबर्स है 0402323003, 0402

दोस्तों, पता ही नहीं चला कब इतनी सारी बातें, स्टोरीज और गाने के साथ हमारा वक्त निकल गया है। बस आज के शो के दौरान हर टॉपिक के पीछे एक छोटी सी कॉमन फीलिंग थी कि लाइफ को थोड़ा नोटिस करना चाहिए। कभी एक वर्ड की ब्यूटी नोटिस करना, कभी बारिश की स्मेल, कभी अपनी ओन जर्नी, कभी फ्रेंड्स के साथ एक सिंपल सा गेम खेलना। तो आज का शो ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा सा ये वाइब अपने साथ ले जाइएगा, कोई गेम खेल लीजिए और पुराने मेमोरीज को ताज़ा कीजिएगा। और स्पोर्ट्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स जीतने के बारे में नहीं है, मैं आप बट हमें उसको फील करना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। मैं थी आपकी होस्ट प्रिया बांधवी, यानी आपकी प्री, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। मैं तो चली बट आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम हमारा है जश्न हैदराबाद, और RJ दीपा जी आ चुके हैं स्टूडियो में आपको एंटरटेन करने के लिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। दोस्तों, सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीरों पेशकश होगी एम ए हई साहब की, और उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जामे, खूबसूरत और दिलकश नगमे, और नैरंग का इख्तिताम होगा पयाम शब के साथ। तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश है जनाब एम ए हई साहब की। लीजिए समाअत फरमाइए।
1: समय तसव्वुर कीजिए, कदीम ज़माने का लोगों के पास कितने वसाइल रहे होंगे। ज़ाहिर है बहुत ही कम, लेकिन वो सोचते कितना थे, गौर

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले याद गाते जा में खूबसूरत नगमे। दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना वो फिल्म सौतन का था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों, वाकई ज़िंदगी के हर रंग होते हैं। ज़िंदगी में जो है गम, तकलीफ, खुशी, सब कुछ आता है। कभी इंसान टूट जाता है, कभी इंसान संभल के उभरता है और एक नई शुरुआत करता है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले आते हैं, बहुत सारे पल आते हैं जिसको हमें जीना पड़ता है, और यही असल ज़िंदगी की हकीकत भी है। तो दोस्तों, आज जैसा कि हमने शुरू में बताया था, आज एक ख़ास दिन है और उस ख़ास दिन का नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और हम इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं नगमों के बीच बीच में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 16 जुलाई 1945 से। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के एक वीरान सहरा में दुनिया का पहला जौहरी तजुर्बा यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इसे तारीख में, हिस्ट्री में ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। ये वो लम्हा था जिसने इंसानी तारीख के एक नए और इंतहाई ख़तरनाक दौर का आगाज किया। उसके चंद ही हफ्तों बाद अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए और दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों से जौहरी हथियार की तबाहकुन ताकत को भी देख लिया। फिर शुरू हुई जौहरी हथियारों की एक खौफनाक दौड़। अक्वाम मुत्तहदा यानी यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 1945 से लेकर अब तक दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए जा चुके हैं। सामीन, ज़रा सोचिए, इंसान ने आग दरियाफ्त की ताकि ज़िंदगी आसान हो, लेकिन उसी इंसान ने एक ऐसी आग भी लगा दी जो पूरी आबादियों को राख कर सकती है। तो ईजाद दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस ईजाद का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, गुफ्तगु और नगमों का सिलसिला तो जारी रहेगा, और इसी सिलसिले के तहत हम सुन लेते हैं आज का दूसरा गीत। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जामे सुन रहे हैं, प्यार भरे नगमे। दोस्तों, आज हम इन नगमों के बीच में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट

टेररिस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खामोश मगर ख़तरनाक मुकाबला शुरू हुआ जिसे दुनिया कोल्ड वार यानी सर्द जंग के नाम से जानती है। 29 अगस्त 1949 यानी 1949 को सोवियत यूनियन ने अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया यानी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उस दिन के बाद से दोनों ताकतों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक हथियार बनाने की दौड़ और तेज़ हो गई। बाद में बरतानिया, फ्रांस, चीन और कई दूसरे मुल्क भी इस दौड़ में शामिल हो गए। ये तजुर्बात फिज़ा में भी हुए, ज़मीन के अंदर भी और समंदरों के नीचे भी, लेकिन एक खामोश दुश्मन हर जगह साथ साथ चलता रहा जिसका नाम था रेडिएशन। यानी फ़ज़ाई तजुर्बात से पैदा होने वाला रेडिएशन हवा में घुलता चला गया और दुनिया भर में इंसानी सेहत और माहौल के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता चला गया, और आज भी बहुत से लोग इसके शिकार हुए हैं। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे। दोस्तों, इन नगमों के बीच में हम बात कर रहे हैं आज का जो ख़ास दिन है यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में भी। दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 29 अगस्त की असल कहानी क्या है। सामईन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर 29 अगस्त ही क्यों, इसके पीछे एक नहायत ही मानखेज तारीखी इत्तेफाक है। दरअसल कजाकिस्तान में एक जगह है सेमी प्लातिनसिक, जो साबिक सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा जौहरी तजुर्बाती मरकज था। इसी मकाम पर 29 अगस्त 1949 यानी 1949 को सोवियत यूनियन ने अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया। उसके बाद दहाइयों तक वहाँ धमाकों का सिलसिला जारी रहा और फिर तारीख ने एक खूबसूरत एक अलामती मोड़ लिया, यानी 29 अगस्त 1991 को आयन इसी तारीख यानी 29 अगस्त को ही उसी जगह पे जो तो जहाँ तजुर्बात की जौहरी तजुर्बात की शुरुआत की गई थी उसे हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला लिया गया। तो ये दिलचस्प कहानी था सामीन, आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। यह उसने इत्तेफाक देखिए कि 29 अगस्त की शुरुआत भी थी और 29 अगस्त को ये अज़्म किया गया कि जौहरी तजुर्बात यानी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ और सुनते हैं, आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं दिलकश और ख़ूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, ये गीत जो है बहुत ही शानदार गीत, आपको ज़रूर माजी में ले गया होगा। ये फिल्म मेरे हमसफ़र साहब ने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, इस गीत पे मुझे एक शेर याद आया। उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, हम आज नगमों के बीच बीच में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। सामिन, सवाल यह है कि जब दुनिया में जौहरी तजुर्बात पहले के मुकाबले में बहुत कम हो चुके हैं, तो फिर हर साल ये दिन मनाने की ज़रूरत क्या है? इसकी चार बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़। जौहरी तजुर्बात से पैदा होने वाले रेडिएशन इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरनाक साबित हो सकती है, ख़ासतौर पर जब तजुर्बात आबादियों के करीब किए जाएँ। दूसरी वजह, माहौल का तहफ़्फ़ुज़। जौहरी धमाका सिर्फ एक लम्हे का

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले का तजा में सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे। ये गीत आपने सुना फिल्म मेरे सनम से। दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में हमने बात की थी कि आज का जो ख़ास दिन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो हम नगमों के बीच बीच में इस दिन की अहमियत, ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन से हमें क्या सबक मिलता है, इस पर भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, जौहरी तजुर्बात को यानी न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए दुनिया ने एक अहम माहदा तैयार किया, जिसे कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT का नाम दिया गया। ये माहदा अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली ने 10 सितंबर 1996 को मंजूर किया और 24 सितंबर 1996 को दस्तखत के लिए दुनिया भर के मुल्कों के सामने इसे रख दिया गया। इसका बुनियादी मकसद हर किस्म के जौहरी धमाकों पर मुकम्मल पाबंदी लगाना है, यानी किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो और कोई भी मुल्क करे। ये माहदा आज तक आलमी सतह पर जौहरी तजुर्बात यानी न्यूक्लियर टेस्ट के ख़िलाफ़ एक मजबूत उसूल कायम करने में कामयाब रहा है। तहम ये अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं हो सका है, यानी इस पर अभी तक पूरी तरह से अमल आवरी नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए कुछ मखसूस जौहरी सलाहियत रखने वाले मुल्कों की तौसीख अब भी दरकार है। दोस्तों, ये बात हमें याद दिलाती है कि अमन के लिए सिर्फ कागज़ पर माहदे लिख देना काफ़ी नहीं है, इस पर अमल करने का अज़्म भी उतना ही ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा है ना, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या ज़रूरी है। आइए इस शेर के साथ सुनते हैं और आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। और मुझे उम्मीद है इन प्यार भरे नगमों से आप ज़रूर लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे और कुछ नगमे आपको ख़ास तौर पर माजी में ले जा रहे होंगे। और अगर आप लुत्फानंदोज़ होते हैं तो हमारे लिए भी बहुत खुशी का मौका होता है। दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना, ये फ़िल्म नया दौर का था। फिल्म नया दौर को मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि नया दौर उस बदलते हिंदुस्तान की अक्कासी कर रहा था जहाँ पर मशीनें और नई नई मशीन आ रही थी और मेहनतकश मज़दूरों का एक मामला हिंदुस्तान में उठ रहा था। मशीन जो है मज़दूरों का रोज़गार छीन रही थी। तो उस उन्वान पे नया दौर फिल्म बना। बी आर चोपड़ा ने इसे बहुत अच्छी तरह बनाया। दिलीप कुमार ने शंकर का किरदार अदा किया दोस्तों। और आपको मालूम है कि फिल्म में दिलीप कुमार, विजयंती माला, अजीत और जानी वाकर ने अहम किरदार अदा किए। फिल्म में तरक्की के साथ साथ रोज़गार और इंसानी मेहनत के तहफ़्फ़ुज़ का भी अहम सवाल उठाया गया है। इस फिल्म की मौसीकी ओपी नैयर ने तरतीब दी। यही वजह है कि ये फिल्म आज भी लोगों को याद है और इस फिल्म के नगमों का तो कहना ही क्या। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं हम अपना अगला गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में प्यार भरे नगमे। और इन नगमों से आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं, माजी के दरीचों में झांक रहे हैं और खूबसूरत यादें आपको एक अलग दुनिया में ले जा रही हैं। दोस्तों, ये फिल्म मोहरा से आपने अभी गीत सुना, ना कजरे का हार। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। जी दोस्तों, खूबसूरती का मामला बहुत अजीब है। हिंदुस्तान में 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई तो ये दोनों ज़ुबानों में हुई, यानी उर्दू में भी हिंदी में भी। उस वक्त प्रेमचंद ने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना पड़ेगा, यानी हमें जो ब्यूटी है उसका मेयार बदलना पड़ेगा, वरना आम तौर पर एक खूबसूरती, खूबसूरत चेहरा और ज़ाहरी खूबसूरती को बहुत कुछ समझ लिया गया था। लेकिन कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले के आँखों में होती है। तो दोस्तों, खूबसूरती, ज़ाहरी खूबसूरती जो भी है अपनी जगह पे, लेकिन इंसान की बात में, किरदार में, अंदाज़ में, आगाज़ में, गुफ्तगू में खूबसूरती होनी चाहिए, ताकि सामने वाला उसको हमेशा याद रखे और वो हमेशा अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। तो दोस्तों, हम सब यही कोशिश करें कि खूबसूरती अपने किरदार में पैदा करें और अपने अखलाक में पैदा करें और अपने अंदाज में पैदा करें, ताकि हम एक अच्छे इंसान भी बने और एक अच्छे इंसान की तरह दूसरों के साथ पेश भी आएँ। दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी रहेगा।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाताजा में खूबसूरत नगमे सुन रहे हैं और उससे महजूज हो रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने फिल्म मुगले आज़म का ये खूबसूरत गीत सुना। दोस्तों, मुगले आज़म 1960 में रिलीज़ होने वाली हिंदुस्तानी सिनेमा की एक लाजवाल फिल्म है। फिल्म के हिदायतकार के आसिफ थे और मरकज़ी किरदार में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे नज़र आए। दोस्तों, आपको इस फिल्म के बारे में तो पहले से बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना ज़रूर चाहूँगा, ये फिल्म इतनी अच्छी ही और अभी भी है कि आसिफ एक फिल्म बना के अमर हो गए। यानी आज भी वो बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत ही उनका नाम जो है तारीख में अमर हो गया। फिल्म की कहानी मुग़ल शहजादे सलीम और अनारकली की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। इस फिल्म में कई मोड़ आते हैं जहाँ पर मोहब्बत, बगावत, सब कुछ सामने आता है। तख्त की, ताज की, सब कुछ, सारी कहानियाँ आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ के मोहब्बत का नाम ही बगावत है, वो तैयारी, और बगावत का नाम ही मोहब्बत हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और लीजिए, आपको सुनवाते हैं अगला खूबसूरत गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और नगमों का हमारा सफ़र जारी है। प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने फिल्म बॉर्डर का ये खूबसूरत नगमा सुना। दोस्तों, जैसा कि बॉर्डर के नाम फिल्म के नाम से वाजे है कि यह बुलवतनी पे बनी फिल्म है, और इसी बहाने अगर हम फ़ौजियों को याद करें तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ौजी जो सरहद पे तैनात हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हमारी पुरसकून ज़िंदगी के पीछे फ़ौजियों के बेशुमार कुर्बानियाँ शामिल होती हैं। सख्त मौसम, दुश्वार हालात और ख़तरात के बावजूद वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। और ऐसा नहीं है फ़ौजी सिर्फ सरहदों पर ही, बल्कि कुदरती आफात और हंगामी हालात में भी वो आवाम की मदद करते हैं। उनकी बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसीलिए हम उन्हें सलूट करते हैं। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और फ़िलहाल सुनते हैं ये ख़ास गीत।

दोस्तों, ये गीत आपने फिल्म में पुलिस और पब्लिक से सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर और अमित कुमार की। दोस्तों, हम इस गीत के साथ ही नगमों के सफ़र के मंजिल तक पहुंच चुके हैं और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। और अब पेश है प्याम शब, तहरीर व पेशकश है जनाब ज़ैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। रिश्तों को सिर्फ दिल में रखने के बजाय उनका इजहार भी जरूरी है। खामोशी बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज्यादा बेरुखी का तासुर देती है। अगर किसी से ताल्लुक हो, उसकी फिक्र हो या उससे तवक्कयात वाबिस्ता हो, तो मुनासिब अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। रिश्ते सिर्फ दिल में नहीं, रवैयों और अल्फाज में भी नजर आने चाहिए। मोहब्बत, ताल्लुक और खुलूस का इजहार करते रहो, क्योंकि मुसलसिल खामोशी कभी कभी फासले पैदा कर देती है। गिला हमेशा दुश्मन से नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर वही शख्स शिकायत करता है जिसके दिल में ताल्लुक और अपनाइयत होती है। इसीलिए अपने अजीज रिश्तों की कदर करो और उनसे राबता व इजहार बरकरार रखो।
1: जी दोस्तों, रिश्तों को बचाना, उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। जाहिर है रिश्ते बहुत ही अहम होते हैं। दोस्तों, इसी पैगाम के साथ हमारी आज की बज़्म यानी नयरंग इख्ताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर

0: भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas today to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: जी नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले. अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक

0: है उस पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए। तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है, करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं। और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है
1: जी
0: वो, उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो अब 12 सितंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं जीएसटी की तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह इंतज़ार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
0: देखिए ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल
1: जी
0: रही
1: जी
0: है। यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है। तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं
1: जी
0: उनके लिए स्थिति बेहतर तो नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर की बात
0: तो
1: जी
0: ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती हैं लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और ख़ासतौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनके लिए स्थिति बेहतर
1: और
0: है।
1: ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर, तो
0: बिल्कुल
1: ईवी बहुत किफायती भी है हाउसहोल्ड के लिए
0: नहीं,
1: और
0: कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो
1: हाँ
0: ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है शुरुआत
1: शुरुआत
0: में।
1: में
0: हाँ
1: हाँ
0: लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे?
1: जी जी
0: और
1: जी
0: ख़ासतौर पर अगर मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात करूँ वहाँ पर एक समस्या है अभी भी। तो एक कॉशस है लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं
1: हाँ
0: और जहाँ
1: हाँ
0: पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है। वो
1: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार
1: नमस्कार
2: नमस्कार मार्केट मंत्रा, नमस्कार सुशील सिन्हा जी। सर मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू।
0: देखिए कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डनरी शेयर होल्डर कहते हैं और जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया। उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार सभी को, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी अमित जी बोलिए।
3: हाँ सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर ग्रोस सॉरी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात हमें खुशी मिलती है तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है, टू ट्रेड।

0: बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईटी में, तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए? हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम
1: अमित जी, आपकी आशंकाएं गलत नहीं हैं कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। यहाँ पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफ़ी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूं। मैं
2: Joining us from Bengaluru is NR Prasad. A warm welcome.
3: Hi, good evening, Market Tantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
2: Hello, how are you?
3: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m. And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
1: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session. Trading session, which is between 3:15 and 3:30, and that is based on the future, and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course there will be some teething problem, and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system. So there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery, which is going to benefit the market.
4: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: जी नमस्कार आपको देखो, मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में खासतौर पर, कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल के पीरियड में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं। तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल के इन्वेस्टेड रहना है।
1: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं। बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। ध्यान

0: सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले, ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है आईटी में। इसके अलावा
1: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं।
0: नहीं,
1: अच्छा एक ही प्रश्न है। अच्छा अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं, और अभी आपको बताएं कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है। तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा। हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी है।
2: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहाँ है। तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइंसमेंट में चले जाएं कि इस लालच में चल जाएं कि अरे ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे।
1: नहीं नहीं,
2: क्या ये सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसकी जिसको कहते हैं ना उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
2: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए।
1: बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयरों में स्थिति अच्छी नहीं है? वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही है तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकिए। केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप चेन्नई शेयर में चले जाइए, जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
3: मूविंग ऑन, मेजर US स्टॉक इंडेक्सेस एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस आफ्टर द फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश रिइटरेटेड द सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ रेट हाइक। The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%. The S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss if time permits on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
4: Good evening, sir.
3: Good evening.
4: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business thoda bahut to boost hua hoga, but zyada tar to real estate prices have gone up like anything, because necessity commodities have been under control more or less, but the real estate prices have gone up by leaps and bounds. So is this the reason they are controlling going to increase interest rate, number one? Number two, sir, ये NCLT के क्या लॉज अभी इतने टाइट नहीं है कि पीपल आर एबल टू गेट अवे विथ अगेन विथ इजीली विदाउट हैविंग एक्चुअली पेड द रिस्पांसिबिलिटी? आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट केस व्हिच इज इन द लाइमलाइट। सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा।
1: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean, the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation. And if the inflation is high, that there are various tools, and one of the important tools is the interest.

0: interested. And not just in India, but if you talk about any country, and in, I mean, I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going back, going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a set rules and regulation, and it decides on that only.
1: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
2: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Hello. Ji. Mera sawal hai ki aane wale samay mein FMCG, defense aur pharma sector, kaun se sector mein niveesh karna uchit rahega? Thank you.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी. एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है. वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं. आप अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
2: फार्मा
0: और फार्मा की बात की. दो जो बात के हैं, डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पे उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है. तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं.
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड इन ताशकंद, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
4: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
5: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and the medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
4: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off-connectivity issues.
6: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
4: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
2: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है. उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही. ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख

0: पा रहे हैं शिशिर जी।
1: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं
0: जी
1: उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी। आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी
0: हाँ
1: और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं। ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
0: शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के
1: जी,
0: लिए
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices fall for the third consecutive week, Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दिल की ये बेकरारी बनी रहे और ऐसे ही आप एफएम गोल्ड से जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद आपकी हम सफर बनेंगी माधुरी। फिलहाल नूपुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली यह टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पेश है पानी पर लिखी कहानी। आज की कहानी है प्यारा बंधन।

जी हाँ, ये सुबहें, ये शामें, ये रातें, आते जाते कोई कहानी ही तो कह रहे हैं। कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी के किसी आते जाते लम्हे से टूटकर बनी है। ये कहानी बयां करती है एक बहन के दिल में उसके भाई के लिए उमड़ते स्नेह प्यार की, एक ऐसे इंसान की जिसे हालातों ने जीते जी मार डाला, लेकिन बहन ने उसे बचा लिया। आइए सुनते हैं कहानी प्यारा बंधन।

वो फुटपाथ के एक कोने में दीवार के सहारे दुबका बैठा था। कंबल लेने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन वो उठकर नहीं आ रहा था। और जाने क्यों, सीमा की नजर बार बार उसकी ओर जा रही थी। उसने एक मैली कुचैली चादर में खुद को लपेट रखा था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जाने क्यों सीमा को लगा कि शायद वो वही होगा। सभी को कंबल देने के बाद सीमा उसकी ओर बढ़ गई। सीमा को अपनी ओर आती देखकर वो डर के मारे सिमट गया। ना जाने किस बात का डर था उसे, लेकिन जितना जितना वो खुद को छिपाता जा रहा था, उसे देखने की इच्छा सीमा के भीतर उतनी ही बलवती होती जा रही थी। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, वो चुपचाप उठकर दूसरी ओर चला गया। सीमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लेकर सीमा एक बार फिर से निराश मन और भारी कदमों से वापस घर की ओर मुड़ चली। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि फुटपाथ पर बैठे इन लोगों में कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का बेटा, तो कोई किसी का भाई होगा। अनेक दयनीय निगाहें सीमा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और मानो कह रही

उस दिन के बाद सीमा जब भी उस रोड से गुजरती तो एक अनजानी आस जागती और निगाहें फिर उसी इंसान को खोजने लगती। उसे जाने क्यों बार बार लगता कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रही है। इस महानगर की गलियों ने बरसों पहले निगल लिया था सीमा के छोटे भाई को। तब से गाहे बगाहे कंबल या खाना देने के बहाने वो इन फुटपाथों पर आ जाती और हर चेहरे में तलाशने लगती उसे, जिससे बचपन से एक प्यारा बंधन जुड़ा हुआ था। जब भी सावन का महीना और राखी का त्योहार आता तो भाई की याद में सीमा की आंखें सावन बन जाती। दिन भर उसकी राह निहारने के बाद जब रात को आसमान में चांद निकलता तो अनायास ही उसके होठों पर ये गीत आ जाता।

उस दिन राखी का त्योहार था। भाई के लिए स्नेह प्रेम हर दीवार को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था और सीमा के कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े जहां उसने उस अजनबी को देखा था। सीमा ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हो ना हो आज मैं जरूर उससे बात करूंगी। वहां पहुंची तो

अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक अंधेरे कोने में वो बैठा हुआ दिखाई दे ही गया। वही फटे कंबल में लिपटी उसकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सीमा ने महसूस किया कि जब दिल में दया, करुणा, स्नेह, प्रेम का भाव उठ रहा हो तो डर कहीं गायब हो जाता है। शायद दया, करुणा, प्रेम के भाव हर भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सीमा उसकी ओर बढ़ चली। सीमा को देखते ही वो उठकर जाने लगा तो सीमा ने सामने जाकर उसे रोक लिया। वो ठिटका लेकिन रुका नहीं। सीमा ने उसे आवाज दी, सुनो भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रुक गया लेकिन बोला कुछ नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा पूरे अपनत्व को समेट कर फिर बोले, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। सीमा को इस तरह अपने सामने पाकर वो घबरा रहा था और खुद को भरसक छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूं, पहचाना नहीं मुझे? उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल हटाया और धीरे से बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। उसे पकड़ाते हुए बोली, अभी यही है मेरे पास। उसने जल्दी से बिस्कुट लिया और मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। ये देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, किस्मत के खेल कितने निराले हैं, ना जाने किसको कौन सा दिन दिखा दे।

बिस्कुट खाने के बाद वो फिर मुड़कर जाने लगा तो सीमा बोली, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझसे क्या बात करनी है, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानती हूं, आप मेरे भाई हो। सीमा ने कहा।

तो उसने मुंह दूसरी ओर घुमाकर कहा, मैं किसी का भाई नहीं, आप जाइए यहां से। और हाँ, यहां बार बार मत आया कीजिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बस ये कंबल हटा दो। क्यों? उसने सवाल किया। क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है, मेरा भाई खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं, मुझ पर दया करो। कौन खो गया है आपका? उसने धीरे से पूछा। मेरा इकलौता भाई, वो दिमागी तौर पर कमजोर है, गांव से यहां दिल्ली लेकर आई थी इलाज कराने, 12 साल का था। यहीं इसी रोड पर उसकी उंगली छूट गई और ना जाने कहां गुम हो गया मेरा भाई। तब से आज तक ढूंढ रही हूं, दिल्ली की हर गली छान मारी, हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपवाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 10 साल हो गए तब से अपने भाई की तलाश में भटक रही हूं। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते सीमा रोने लगी।

सीमा रो रही थी और वो बस चुप था। अब सीमा को उसकी खामोशी खलने लगी थी और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, लगता है कि तुम्हारे भीतर सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, और वैसे भी तुम नकारा लोगों को संवेदनाओं और रिश्तों नातों से क्या, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही वापस वो मुड़ने को हुई, उस अजनबी ने ओढ़ा हुआ कंबल गिरा दिया। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जला हुआ चेहरा बहुत बदसूरत और भयानक था। कुछ पल बाद सीमा ने नजरें उठाई और सुना कि वो कह रहा था, देख लिया, मैं नहीं हूं आपका भाई। सीमा ने खुद पर नियंत्रण किया और बोली, कौन हो तुम और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो धम्म से पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं अतीत की गहराइयों में जा पहुंची और उसके होठों पर उसकी गुजरी हुई कहानी

मोहन एक संपन्न परिवार का एक लौता बेटा था। पिता सोहनलाल कपड़ों के बिजनेसमैन थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। किसी चीज की कोई कमी ना थी। माता पिता ने मोहन को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। दुख तकलीफ ने मोहन को छुआ भी ना था। मोहन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी पसंद की एक लड़की कामना से हुई। कामना बेहद खूबसूरत और समझदार थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर डालकर चल बसे। मोहन को तब पहली बार पता चला कि दुख हो या सुख, इंसान को ठहरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है।

जी हाँ, सभी की जिंदगी की डोर वक्त के हाथों में है। ये जैसे चाहे इंसान को नाचना ही पड़ता है। मोहन की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी थी और वो जी जान से अपना परिवार और बिजनेस संभालने लगा। मोहन की पत्नी कामना भी बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन कमला से। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो मोहन सारे काम छोड़कर छुट्टी ले लेता और दोनों भाई बहन खूब खुशियां मनाते। मोहन अक्सर अपनी बहन को ये गीत गाकर छेड़ा करता था।

0: सुख या दुख, समय कोई भी हो, हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मोहन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल की कॉल आई।
1: हेलो हेलो मोहन बेटा, तुम्हारे घर से धुआं उठ रहा है, जल्दी घर आ जाओ।
0: मोहन बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर से लपटें उठ रही हैं। वो माँ माँ चीखता हुआ जलते घर में कूद पड़ा। मोहन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी माँ और बहन को आग निगल गई थी और वो हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका था।

मोहन निराशा की भंवर में डूबने लगा। न किसी से मिलता, न किसी से बात करता, बस घर के एक कोने में पड़ा रहता। वो इस अपराध बोध से ग्रसित था कि वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को बचा नहीं पाया। मोहन एक गहरे डिप्रेशन में जा चुका था और फिर एक रात चुपचाप उसने घर छोड़ दिया।

0: कई बार मर जाने की सोची, लेकिन जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर निकली। जाने कब कहां कहां से भटकते भटकते यहां फुटपाथ पर आ बैठा। दिन भर उजाले में छिपकर सोया रहता, रात को खाने की तलाश में निकलता और कहीं कुछ इधर उधर से किसी का फेंका हुआ खाने को मिल जाता तो वो उसी से अपना पेट भर लेता। ये कोई जिंदगी तो नहीं थी, मगर इसके अलावा मोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। यह यूं कहें कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही मर जाए तो रास्ते होते हुए भी खो जाते हैं और इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है और जिंदगी एक पहेली।
1: जिंदगी कैसी है पहेली।

मोहन अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर चुप हो चुका था। अब शायद वो सीमा की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। सीमा को खामोश देखकर उसने अपना कंबल उठाया और चल दिया। सीमा सोच रही थी कि अब क्या करना है। अचानक उसने पीछे से मोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है ना, देखो तुम्हारी कलाई सुनी है और मेरी राखी भी अधूरी।

साथियों, तो ये थी कहानी प्यारा बंधन। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमारी मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com पर भी हमें भेज सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कुसुम को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक से निहित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सफर शुरू हो गया है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को।

गीत सुहाने में हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सुहाने से गीत, और ये गीत सुन रहे थे आप मेरा साया फिल्म से आशा जी की आवाज मदन मोहन के संगीत के साथ।

तो भाई ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी मंजिल से, आशा मोहम्मद रफ़ी, आरडी बर्मन और साथियों की आवाज़ में, और बहुत ही बेहतरीन गीत अभी हम सबने सुना। और इसके बाद अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से।

तो अभी आपने ये गीत सुना फिल्म जब जब फूल के लिए से, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म वक्त से। गीत क्या ये एक कव्वाली है जो बहुत ही मशहूर है और सभी को हमेशा पसंद आती है, तो चलिए आनंद उठाते हैं इसका।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात्रि के 1:30 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। माधुरी है आपके साथ और हम और आप दोनों मिलकर सुन रहे हैं गीत सुहाने। तो हमें यकीन है कि ये सुहाने सुहाने जो गीत हैं, कव्वालियाँ हैं, आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अगला गाना हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म किस्मत से, और इसे गाया है आशा जी ने, शमशाद बेगम ने, साथियों ने मिलकर, ओपी नैयर के संगीत से सजाया ये गाना आप सभी के लिए।

इजहार मोहब्बत पे ये सवाल और उनके ये खूबसूरत जवाब बस इसी कव्वाली में मिलते हैं और सच में दिल को छूने वाले दिल अजीज मतलब सवाल जवाब हैं ये। और इतने मतलब जो इजहार किया है क्या खूबसूरती से किया है, वाह। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। अगला गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म पड़ोसन से। गीत कौन सा है अभी पता चल जाएगा आपको और इसे गाने वाले हैं लता जी, आशा जी और साथियों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। आर डी बर्मन साहब का संगीत है।

तो भाई ये तो लड़कियों की टोली जा रही थी और गाती गुनगुनाती हुई एकदम अपनी मस्ती में। और इस टोली के बाद आगे हम चलते हैं जहाँ फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। इसका गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, संगीत ओपी नैयर जी का और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान साहब ने।

रंग कोई भी हो, इश्क में सारे रंग एक हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात कही है इस गीत में। और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म तीसरी कसम से, आशा जी की आवाज में। और संगीत जो है वो दिया है शंकर जयकिशन ने।

इस प्यारे से गीत ने तो एकदम जो झपकियां आ रही थी ना वो भी उड़ा दी हैं। चलिए ये गीत तो आपने सुना, अब इसके बाद अगला गीत कौन सा होने वाला है? वो है फिल्म महबूब मेरे महबूब से, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, अगला गीत होने वाला है आप सभी के लिए फिल्म अदालत से, लता जी की आवाज में मदन मोहन के संगीत के साथ। और लीजिए पेशी नजर है आपके ये अगला गीत।

तो गीत सुहाने का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलूंगी 2:10 पर, लेकर आऊंगी रात सुरमई कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे।

जहां भी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप सभी। रात सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये गीत पहुंचा आप सभी तक। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।

अब ये तो हमें मालूम है कि आप समझ गए हैं कि अभी आपने कौन सी फिल्म का गीत सुना। जी हाँ, साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नदीम श्रवण का संगीत। और अगला गीत जो हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी से है, और उससे पहले एक शेर मेरा सुनते जाइए कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखता होगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखता होगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा।

0: जोकर।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, संगीत नदीम श्रवण का और बोल लिखे समीर साहब ने। और कुछ उसके आगे अब हम बोलेंगे।

है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, दूर रहकर दिलों में ना दूरी बढ़ी। रास्ते मिलके दो एक सफर हो गए, एक मैं हो गया एक तुम हो गए।

फिल्म बॉम्बे से ये गीत सुना आपने रेमो फर्नांडिस की आवाज में, एआर रहमान का संगीत और बोल महबूब साहब के। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

जी हाँ, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। सिर्फ तुम फिल्म से ये गीत सुना आप सभी ने। कलाकार अमीन साबरी और फरीद साबरी थे, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर भी यहीं पूरा हुआ जाता है। और दीजिए माधुरी को इजाजत, 3:10 पर हमराही लेकर रूपा होंगे आपके साथ। फिलहाल सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत

0: मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता नाम के धर्म गुरुओं के सम्मेलन में बोलते हुए श्री भागवत ने 2018 में दिल्ली में एक व्याख्यान श्रृंखला के दौरान मुसलमानों द्वारा उनसे पूछे गए एक सवाल और उस पर दिए गए अपने जवाब को याद किया। उन्होंने कहा कि हिंदू पहचान के लिए धार्मिक विविधता और हर व्यक्ति की समान अहमियत को स्वीकार करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पतनम मिट्टा में केरलम का प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today.

नमस्कार आप सभी को, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:11 और 16 सेकंड। हमराही कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे शहर में जहाँ

सुनहरी और अनकही दुनिया, जहाँ ना कोई नियम है ना ही कोई पाबंदी। तो चलिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बातें और गीत होंगे सपनों के, और आज आपके साथ रहूंगी मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन। और किसी ने खूब कहा है कि आपकी पलकों के पीछे छुपी हुई है एक पूरी अनकही दास्तान। आइए सुनते हैं इसी दास्तान को इस गीत के जरिए, जिसे हम शामिल कर रहे हैं तलाश फिल्म से।

0: जी हाँ, नैनो ने सपनों की महफिल सजा ली है और आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और बातें हो रही हैं, आज गीत सुन रहे हैं हम आज सपनों पर। तो दोस्तों, वैसे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारी अवचेतन सोच का आईना है। वो बातें जिन्हें हम दिन के उजाले में खुद से भी छुपाते हैं, वो रात के अंधेरे में सपनों का रूप लेकर आ जाती हैं। क्या आप याद करोगे कि कौन सा आपका अपना वो है जो सपना ऐसा अनकहा है अब तक, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसको आप कह नहीं पाए, साझा नहीं कर पाए? तो चलिए इसी एहसास को घोलते हैं संगीत में और सुनते हैं ये सुरीला नगमा सिलसिला फिल्म से।
1: ओ सपनों की रानी,
0: सिलसिला फिल्म का गीत अगली बार सुनवाएंगे। फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए बन फूल से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, सपने वो अनकहे खत हैं जो हमारा मन खुद को ही लिखता है। सपनों की ये अनकही दुनिया भी कितनी अजीब है। रात के होने पर सपनों के रूप में हमारे मन में छुपी हुई बातें कभी हमें हंसाती हैं तो हमें कभी रुलाती हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा हमें कभी कभी डराती भी हैं। यही नहीं, बरसों पुराने खोए हुए लम्हों से कभी कभी हमें दोबारा मिला भी देती है। हमराही कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। समय हुआ है 3:29 और 25 सेकंड। आप सुन रहे हैं सपनों पर आधारित बातें और उनसे जुड़ी गीत।

मोहब्बत और सपनों के इसी खूबसूरत रिश्ते को बयां करता हुआ एक ऐसा ही बेहतरीन गीत सुनते हैं, आइए।

रात ढली तो ख्वाब सजाए, दिल ने चुपके से गीत गाए, थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का सफ़र चलता जाए, हाँ मोहब्बत का सफ़र चलता जाए।

तो दोस्तों, बीते दिनों की मीठी बातें सपनों में जगमगाती रातें, कुछ खट्टी मीठी सी पुरानी यादें जैसे पलकों पर ठहरी हो बरसाते। हाँ, सपनों की सुनहरी यादें दिल में कई नई उम्मीद जगा देती हैं। थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का ये सफ़र चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है।

दोस्तों, रात की खामोशी में भी एक आवाज़ है। हर बीते हुए लम्हे में छुपा हुआ कोई एक राज है। आंखें बंद करो तो आ जाती है वही मुस्कान। सपनों की इस दुनिया का एक अलग ही अंदाज़ है। जी हाँ दोस्तों, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो लम्हे हमारी आंखों में और दिल में बस जाते हैं, वो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी सुनहरे हो जाते हैं। हम राही से विदा लेने से पहले इतना ही कहेंगे कि अपने ख्वाबों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कल सुबह इन्हीं ख्वाबों को सच जो बनाना है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, दिन पर दिन गाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

और इसी के साथ हमराही से विदा लेती है रूपा, लेकिन आप इसी तरह गुनगुनाते रहिए, सपनों को सजाते रहिए, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी अरुणिमा। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या

0: 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई अचानक बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलपुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम थिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू ये मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी आज तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains at the Presidential Palace. Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and after that he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. Both the leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people relations at the Presidential Palace. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense, but both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of medicine, agriculture and skill development, as well as finding new avenues of connectivity, can be focus of discussion between the two leaders. Due to the Prime Minister's efforts, trade between the two countries has increased by 300% in the last 10 years. Together, the two countries are aiming to double the current $1 billion trade in the coming years.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:11 और 17 सेकंड हो चले हैं। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अरुणिमा में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और लीजिए एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं और 6 बजे तक आपके साथ ही रहूँगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज अरुणिमा

महिमा में हम आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा गीतों को और बातें करेंगे आपके साथ, कुछ बहुत ही सकारात्मक बातें। तो जनाब, सकारात्मक विचारों का हमारी दुनिया में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हम कंजूसी करते हैं अपने आप को सकारात्मक रखने में। तो आज इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी ये कहानी।

दोस्तों, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ, हर छोटा प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। हर दिन की एक छोटी सी कोशिश ही बड़ी सफलता की एक न एक दिन नींव रखती है।

साथियों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपकी सोच तय करती है कि आप उनसे हारेंगे या सीखकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी अपना नज़रिया बदलने से भी हमारी जो मुश्किलें इतनी कठिन लगती हैं वो आसान हो जाती हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ। समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:24 और 44 सेकेंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

जी हाँ, मुश्किल और कठिन समय में अपनों का साथ बहुत अहमियत रखता है। जब अपने साथ हों तो हर मुश्किल से दुनिया जीती जा सकती है। दूसरों की भलाई भी जो करते हैं, उनका किया गया ये छोटा सा काम भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में बड़ी शांति और खुशी लेकर आता है। कभी ना कभी आपने किसी ना किसी की छोटी सी मदद की ही होगी, और जो मदद पाने वाला है ना, जब उसकी मदद पूरी हो गई, उसका काम पूरा हो गया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उसे देखकर आपको भी ज़रूर कभी ना कभी खुशी तो मिली ही होगी।

वक्त दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है हाथों से, जैसे हाथों में से मुट्ठी में से, मुट्ठी में से रेत भरी होती है ना, तो जब मुट्ठी को रेत को जितना भी बंद करो हाथों से फिसलती रहती है और कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं भी समय के साथ साथ बह रही हूँ, आप भी समय के साथ चलिए। इसी तरह हमारे स्टूडियो की घड़ी भी कह रही है, इशारा दे रही है, 4:40 आप हैं अरुणिमा के सफ़र पर रूपा के साथ। साथियों, हमारा आत्मविश्वास ही हमें हरा सकता है, आत्मविश्वास ही हमें ऊंचा उठा सकता है, यानी आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते। तो अपने दिल को मजबूत करिए, आत्मविश्वास को मजबूत करिए और चल पड़िए एक नई सफ़र पर, उस नई राहों पर जो आपको आपकी मंजिलों के मुकाम तक पहुंचाएगी।

मुस्कुराहट एक ऐसा दिया जो दूसरों के दिलों में भी रोशनी कर देता है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। और यकीन मानिए, जब आपके दुखों के बादल छट जाते हैं, तब दिल का बोझ कितना हल्का हो जाता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करते होंगे।

दिया इसलिए जलता है क्योंकि उसमें तेल है, वो हवाओं की परवाह नहीं करता। आप भी बस अपने कर्म करते रहिए, नतीजे खुद ब खुद दिखेंगे। क्योंकि नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी कोशिश पर ही ध्यान देंगे तभी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हुआ है 4:50 और 14 सेकंड। आप हैं अरुणिमा के सफर पर अपने ही दोस्त, अपने ही हमराही रूपा धवन के साथ।

0: जिंदगी में अगर कभी अंधेरा लगे तो आप समझ लेना कि आप अपने अंदर का दिया जलाना भूल गए हैं। अंदर का दिया यानी आपके मन की सोच, आपकी सकारात्मक सोच ही आपके रास्ते का उजाला बनती है। तो अपने मन को इतना मजबूत बनाए रखिए कि जब भी कभी हिम्मत हारे तो फिर से उसे एक नई ऊर्जा देकर फिर से उसकी लौ को जागृत करें और एक नए विश्वास के साथ उठ खड़े हों।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

वैसे ये सोने का नहीं जागने का वक्त है जनाब, और फिलहाल इसी के साथ रूपा को विदा दीजिए। अरुणिमा से भोर सुहानी कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज़्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय

0: के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वो भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम मथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए गुजरात में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। थाईलैंड ने शुक्रवार को हांगकांग चीन पर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड सहित कई स्थानों पर बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains at the Presidential Palace. Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan. And after that, he will directly go to the Palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. Both the leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations at the Presidential Palace. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. As per local government source, 598 Indian nationals crossed into Nepal from China in the last 2 days. Meanwhile, 900 Indian nationals who are yet to depart from China are safe and Indian Embassy in Beijing is in touch with them directly or through the local government. The ministry added that the government of India has been working in close coordination with the Nepali and Chinese authorities for the early rescue and relief efforts of those affected by the floods. Around-the-clock control room has been established in the Ministry of External Affairs and Indian embassies in Kathmandu and Beijing, having 24/7 helplines operational. In the meantime, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that a fourth aircraft sortie, C-130J Hercules with 11-ton assistance, has departed for Kathmandu. An 11-member technical team from India

सपनों का सुनहरा रथ तैयार है, सूरज की लालिमा आकाश पर छाने वाली है। इससे पहले कि वो लालिमा आकाश पर छाए, आइए हम सभी उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्रणाम करें जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हमें जीवन दान दिया है। उस जीवनदाता को हम सभी का बहुत बहुत प्रणाम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। भोर सुहानी लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

प्रकृति की हरियाली से, हरियाली जिसे अब तक चांद ने ओढ़ रखा था काले अंधेरे के रूप में। उस अंधेरे को दूर करती हुई सूर्य की रोशनी, सूर्य की लालिमा धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। और सुबह सुबह तो कह रही है कि मैं तो आ गई हूँ जनाब, लेकिन आप कहाँ खोए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से उठिए और उठकर नमन कीजिए सूर्य भगवान को, आज की नई सुबह को स्वागत कीजिए दोनों हाथों से, बाहें फैलाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। भोर सुहानी में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, जिसमें मिला दो उसकी तरह ही वो हो जाता है। इसी तरह हमें भी पानी से सबक लेना चाहिए। जैसी भी जिंदगी की राहें हों या जैसा भी आसपास का वातावरण हो, हमें उसी तरह से उस वातावरण में घुल मिल जाना चाहिए। शोर फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए, मुकेश साहब और लता जी।

धरती हमें जीवन देती है, सांसें देती है, हवा और सूरज हमें ऊर्जा देता है, फिर भी हम इन्हें अक्सर धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। धन्यवाद किस चीज के लिए? प्रकृति का ये निस्वार्थ प्रेम जिसने हमें जीवन दिया, जो हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उसे छोटा सा एक धन्यवाद कहेंगे तो देखिए फिर क्या मुस्कुराहट आती है प्रकृति के चेहरे पर, और क्या हिलोरे लेकर ये पेड़ों के साथ झूमती है और गाती है।